हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

आप सुन रहे थे भारतीय संगीत का रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग नट भैरव में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं मौसमी सेन. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरित्र घोष और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य. तो लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव में ख्याल गायन, कलाकार मौसमी सेन.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. Listen first to a khayal in the rag Nat Bhairav. Our artist is Mausumi Sen. Accompanying our artist on the tabla is Aritra Ghosh and on the harmonium is Amitava Bhattacharya. Listen now to a khayal in the rag Nat Bhairav. Our artist Mausumi Sen.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थी मौसमी सेन। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरित्र घोष और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य। ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में बांसुरी वादन। आज के कलाकार हैं स्वपन कुमार घोष। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार। तो लीजिए प्रस्तुत है राग अहीर भैरव में बांसुरी वादन, कलाकार स्वपन कुमार घोष।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग नट भैरव। Our artist was Mausumi Sen. Accompanying our artist on the tabla was Aritra Ghosh, and on the harmonium was Amitava Bhattacharya. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a flute recital. Listen to a flute recital in the rag Ahir Bhairab. Our artist is Swapan Kumar Ghosh. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar. Listen now to the rag Ahir Bhairab on the flute. Our artist, Swapan Kumar Ghosh.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में बांसुरी वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे स्वपन कुमार घोष। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a flute recital in the rag Ahir Bhairab. Our artist was Swapan Kumar Ghosh. Accompanying our artist on the tabla was Debashish Sarkar. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन. उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे हैं अतुल फड़के. प्रस्तुत है ताल तीन ताल. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर. ही इज अकम्पनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय अतुल फड़के. पंडित राजेंद्र अंतरकर प्रेजेंट्स ताल तीन ताल.

ये था ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल पंचम सवारी। दैट वॉज ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर नाउ प्रेजेंट ताल पंचम सवारी।

ये था ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल द्रुत तीन ताल। दैट वॉज ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल विद ताल द्रुत तीन ताल।

ये था ताल द्रुत तीन ताल। आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे थे अतुल फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज ताल द्रुत तीन ताल। यू वेर लिसनिंग टू तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर। ही वॉज अकंपनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय अतुल फड़के। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग. आलाप के बाद विलंबित और द्रुतगत क्रम तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital in Raag Bihag, Pandit Debu Chaudhary. The alap is followed by Vilambit and Drutgat set to Teen Tal. Pandit Debu Chaudhary is accompanied on the tabla by Rafiuddin Sabri.

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए धुन राग मांड। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बिहाग प्लेड ऑन द सितार बाय पंडित देबू चौधरी। लिसन नाउ टू धुन राग मांड। द अकॉम्पैनीमेंट ऑन तबला इज प्रोवाइडेड बाय रफीउद्दीन साबरी।

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया धुन राग मांड सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी रफियुद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू पंडित देबू चौधरी प्लेइंग धुन राग मांड ऑन द सितार। ही वाज अकंपनीड बाय रफियुद्दीन साबरी ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बाबूलाल गंधर्व का बेला बहार वादन। प्रस्तुत है राग गुजरी तोड़ी। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं शंतनु किंजवड़ेकर। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट बेला बहार रिसाइटल बाय बाबूलाल गंधर्व। ही प्रेजेंट्स राग गुजरी तोड़ी, विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय शंतनु किंजवड़ेकर।

ये था राग गुजरी तोड़ी। अपना बेला बहार वादन जारी रखते हुए बाबूलाल गंधर्व अब प्रस्तुत करते हैं राग जोग। मध्यलय गत रूपक ताल में निबद्ध है, ध्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। दैट वॉज राग गुजरी तोड़ी। इन कंटिन्यूएशन ऑफ हिज बेला बहार रिसाइटल बाबूलाल गंधर्व नाउ प्रेजेंट राग जोग। मध्यलय गत सेट टू रूपक ताल एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

राग का बेला बहार वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे शंतनु किंजवड़ेकर। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग जोग। यू वर लिसनिंग टू बेला बहार रिसाइटल बाय बाबूलाल गंधर्व। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय शंतनु किंजवड़ेकर। This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको सर्वप्रथम खम्बाज ठुमरी तदुपरांत काफी दादरा सुनवाएंगे. कलाकार हैं अंजना नाथ. आपके साथ तबले पर हैं औसित कुमार जाना और हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी. तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम खम्बाज ठुमरी तदुपरांत काफी दादरा. कलाकार हैं अंजना नाथ.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन फर्स्ट टू खम्बाज ठुमरी फॉलोड बाय काफी दादरा. आवर आर्टिस्ट इज अंजना नाथ. Accompanying our artist on the tabla is Oshit Kumar Jana and on the harmonium is Debashish Odhikari. Listen now to Khambaj Thumri and Kafi Dadra, our artist Anjana Nath.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम खम्बास ठुमरी सुन रहे थे, तदुपरांत काफी दादरा सुन रहे थे। कलाकार थे अंजना नाथ। आपके साथ तबले पर थे औसीद कुमार जाना और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग बागेश्वरी पर सारंगी वादन। कलाकार हैं सुधेंदु हालदार। आपके साथ तबले पर हैं जॉयदास गुप्ता।
1: You were listening to Khambaj Thumri and Khafi Dadra. Our artist was Anjana Nath. Accompanying our artist on the tabla was Oshit Kumar Jana and on the harmonium was Debashish Odhikari. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Sarangi recital. Listen to a Sarangi recital in the rag Bageshri. Our artist is Shudhendu Haldar. Accompanying our artist on the tabla is Joy Das Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाग्यश्री पर सारंगी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुधेंदु हालदार, आपके साथ तबले पर थे जॉयदास गुप्ता। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Sarangi recital in the rag Bageshri. Our artist was Shudhendu Haldar. Accompanying our artist on the tabla was Joy Das Gupta. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुभाषा मिश्रा का वायलिन वादन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी. मध्य लय और द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा.

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी। अब प्रस्तुत है इन्हीं का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। विलंबित रचना तीन ताल और द्रुत रचना झप ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। सुभाषा मिश्रा अपने कार्यक्रम का समापन वायलिन पर बजाए राग मिश्र भैरवी से कर रही हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग मिश्र भैरवी, तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है ध्रुपद गायन। इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं उदय भवाड़कर के गायन से। आपने प्रस्तुत किया है राग हंसध्वनि।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे उदय भवालकर का ध्रुपद गायन, राग था हंस ध्वनि। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं उदय भवालकर का प्रस्तुत किया राग केदार तार धमार। बोल है चोरी चोरी मारत कुमकुम, आपको पखवास पर संगति कर रहे हैं माणिक मुंडे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं उदय भवालकर का पद गायन राग केदार।

श्रोताओं, उदय भवारकर के ध्रुपद गायन में हम सुन रहे थे राग केदार। आपको पखवाज पर संगति कर रहे थे माणिक मुंडे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज सो बना ब्याहन आया, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोरे घर आजा. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ हैव फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खां. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. Mujahid Hussain Khan first presents rag Puriya Kalyan, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Ek Tal, and this will be followed by the Chhota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं पीर न जानी बलमा और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग पूरिया कल्याण कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल। वी नाउ हैव मुजाहिद हुसैन खान प्रेजेंटिंग राग मालकौंस इन विच यू विल हियर द बड़ा ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल फॉलोड बाय अ तराना सेट टू तीन ताल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है भारतीय संगीत का रागम DTH चैनल. हर दिन हर पल भारतीय संगीत. संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है. स्वर है मलय बनर्जी का, बोल है विनती सुनो मेरी.

0: आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए अब सुनिए उषा मंगेशकर के स्वर में संत रैदास की रचना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
1: प्रभु

संजीवनी बैलांडे के स्वर में आइए अब सुनाए संत मीराबाई की ये रचना तुम मोरी राखो लाज हरी।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। सविता बनर्जी की आवाज में आइए सुनते हैं गुरु नानक की रचना, बोल है एक सहारा है तुम्हारा।

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए सुनिए शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल स्वरों में कृष्णदास की ये रचना, बोल जब ते श्याम।